0: This program is brought to you by
1: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
4: सुनते रहो GFM 90.4.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। वधीक पाणी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا।
7: और तेरे रब की बात सच्चाई और अदल वाली पूरी कामिल है, यानी तेरे रब की बात में सच्चाई भी है, अदल भी है। तेरे रब का हर हुक्म सच्चा है, यानी तेरे रब की बातें मुकम्मल है सच्चाई के एतबार से और अदल के एतबार से। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता उसको कोई ऐसा हुक्म देकर। ला मुबद्दिल लिकलिमाते, उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, यानी किसी को इख्तियार नहीं के बदले। अल्लाह के हुक्म को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वहुवस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो आप किसी इंसान को ये हक न दें कि वो उस हुक्म को बदल दे या आप उसकी मर्जी पे चल

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए छो ऐ छो सडियो त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जना बीमार छो यो किसो ता के आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जना बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

0: जनवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अमरीका जा दखण ईरान में हवाई हमला सेंटकॉम जो चवण आए तो अमरीकी फौज दखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधन के निशानो बणायो। बारूदी सुरंगू विछायण बारन ईरानी बेड़न के भी निशानो बणायो वियो। उन अग बंदरी अब्बास में धमाकन जा आवाज बुधा वया हुआ। ईरानी मीडिया जो चवण आए तो बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में आए। अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरो बीहर ईरान के धमकी डींदे चयो आए तो यूरेनियम अमरीका हवाले करनी पवंदी या बे कें काबिल कबूल जाए तो मुंतकिल करे तबाह करनी पवंदी, बियो को रस्तो ना है। यूरेनियम ईरान में ही रहंदी, अपने हुर्मुज़ के गालिन जो हिस्सो न बढ़ाईंदासीं। ईरान वाज़े करे छड़ियो। पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आए तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म थी तो आबने हुर्मुज़ का गुजरन जो अमल असाजे तय कल इंतजाम तहत थी। ईरानी आबने हुर्मुज़ से ईरान के खुदमुख्तियारी अमन माहदे ताई पहुंचने लाय अहम असाजे अजीम कुर्बानी की बुनियादी सुतून में एक अहम जाग्राफियाई अहमियत है। आबने हुर्मुज़ के कदें भी गालन जो हिस्सो न बढ़ाईंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252586।
2: जी हाँ बुड़ी 331 5786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा कुछ मुस्लिम विचों का फर्तीवन ए केरी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू पहले मैं वो सम्मेलन न वन तुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी मारे वे जंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थोड़े जा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पौंदो मां त घणो पहले पान खे रोकिया पर छा करिया मुझी दिल नथी रहे।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक भरोसे का।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो।

0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2314525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: कलमा पढ़ो से निक धेरा देहर पढ़न दिया बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिशा को जुदाई मुस्लिम विचों का फर्थी वन ए केरी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करें न अंधाई
1: अर्दा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तो तू मैंने महबूब सम्मेलन नवन तुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी मारे वेजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थोड़ जा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पौंदो मां तो घणो पैसे पान खेरो थ्या पर छा करिया मुझे दिल नथी रहे।

0: कलमा पढ़ो से हिक भेरा दीहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों का फरती वन ए केड़ी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तू पहले मैं वो सम्मेलन नवन तुझा दुश्मन तोखे होते तुझा वेरी बारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खान थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: आप सुन रहे हैं
1: GFM 88
0: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: अमरीका जा दखण ईरान में हवाई हमला सेंटकॉम जो चवण आए तो अमरीकी फौज दखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधन के निशानो बणायो बारूदी सुरंगू विछाइण वारन ईरानी बेड़न के भी निशानो बणायो वियो उन खां अग बंदरी अब्बास में धमाकन जा आवाज बुधा वया हुआ ईरानी मीडिया जो चवण आए तो बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में आए अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरो बीहर ईरान के धमकी डींदे चयो आए तो यूरेनियम अमरीका हवाले करणी पवंदी या बे कें काबिल कबूल जाए तो मुंतकिल करे तबाह करणी पवंदी बियो को रस्तो नाए यूरेनियम ईरान में ही रहंदी आपने हुर्मुस के गालन जो हिस्सो न बणाईंदासी ईरान वाज़े करे छो पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आए तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म थी तो आबनह हुर्मुस का गुजरण जो अमल असाजे तय कल इंतजाम तहत थन्द ईरानी आबनह हुर्मुस से ईरान के खुदमुख्तियारी अन मुहदे तई पहुंचण ला अहम असाजे अजीम कुर्बानी की बुनियादी सुतून में एक अहम जाग्राफियाई अहमियत है आबनह हुर्मुस के कदें भी गालन जो हिस्सो न बढ़ाईंदी

0: TAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM
3: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
8: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252578 6।
8: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वॉचिंग इंटरव्यू वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपको और मेरा साथ रहता है, और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो 11:18 पाकिस्तान का मियारी वक्त है, जो कि तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है, और इसके अलावा

इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत दे मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत दे मतलब

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीकेकार से, और जिसमें से पहला तरीकेकार है सिंपली मैसेज करने का। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, वो कौन सा पेज होगा वो आपसे कुछ देर बाद जो है मैं आपको बताऊंगी, और साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर पाएंगे। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल की जा सकती है, और कॉल करेंगे आप लोग, कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे, सो जरूर ज्वाइन करें। एंड हियर कम्स अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये जो गाना है ये होगा बहुत ज्यादा खूबसूरत, और इसको हम सुनेंगे, और इसी गाने के साथ हम आगे चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: yeah!

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: fan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-Day Beauty Plan ke saath. एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252586
4: जी हाँ बुढ़ी 331 5576
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: कीजिए. वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. हमारा सेगमेंट होने वाला है जी, दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ. और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम चलेंगे आगे और देखते हैं कि कॉलर कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद होते हैं और कौन से गाने हमें सुनाते हैं. ठीक है जी, तो कॉल कर सकते हैं आप लोग 03000113488 के ऊपर. ठीक है जी, सो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल और इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. चेक करेंगे कौन और कहाँ से. हेलो, वालेकुम
1: सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं पे? सॉरी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है. थोड़ा सा सही जगह पे जाके बात करेंगे ताकि आपकी आवाज क्लियरली आ सके.
1: आवाज क्लियर
0: जी. जी नाम बताइएगा. मुझे बताएं कि गाना लेकर आए, कोई सुनाएंगे
1: गाना.
0: ओके ओके ओके. तो मुझे ये बताइए कि किसी को डेडिकेट करना है.
1: बेबी के दोस्त
0: सुब्राम. ओके जी, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. गाना प्ले करने जा रही हूँ जी. जोगे भाई ने हमें कहा है कि ये वाला गाना प्ले कर दें, तो ये वाला गाना प्ले कर रहे हैं. द वन एंड ओनली अताउल्लाह ईसा खान, ईसा खेलवी. सो प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM

0: 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आकर मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. सुर लगाओ गाना सुनाओ में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं जी और हम कॉल्स रिसीव करेंगे आप लोगों की. सो कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद होंगे. नेक्स्ट चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. सागर भाई बात कर रहे हैं. सागर भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: खैरियत ठीक ठाक मैम. कॉल नहीं लग रही है, दो तीन हफ्ते हो गए मैम कॉल मिला रहा हूँ. नंबर पावर डाउन बता रहे हैं.
0: ओके जी, अब लग गई है और हो सकता है ये लाइन्स बहुत ज्यादा बिजी हो, है ना?
1: नहीं बिजी की बात नहीं, मैं अगर बिजी हूँ तो बिजी बताए ना. नंबर पावर डाउन बता रहा था मैंने.
0: अच्छा पावर डाउन.
1: हाँ जी जी, पावर डाउन तीन हफ्ते से बुला रहा हूँ. पावर डाउन बता रहा.
0: चले अब कॉल लग गई है तो अच्छा सा गाना सुना दे हमें कोई.
1: गाने के लिए तो आपको पता है गाने के लिए तो.
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाए सुनाए.
1: प्यार तोड़ने वाले प्यार छोड़ने वाले क्या तो छोड़ना जा तुझे माया किया दिल का तोड़ने वाले प्यार किया मुझको ये छोड़ने वाले.
0: ओके जी, वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट किसी को नहीं करना. मैं मेरे ये दो तरफ से बात कॉल लगी है. रेडी कर किसको करूँ भाई? दोस्त के काम नहीं मुझे ना, मेरे पास ही बैठे हुए हैं. चार बजे वाले शो में नहीं आपका सुनकर
0: बिल्कुल आज आएंगे आएंगे सारी शोज पे.
1: मेरी कॉल नहीं लगती है मैम, दूसरे की कॉल लगती रहती है. मैं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ.
0: इंशाल्लाह. ओके, आज आपकी कॉल जरूर लगेगी. बेफिक्र हो जाए, अपना बहुत सारा ख्याल रखे. ठीक है
1: ठीक है.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. गाना आपका ये रहा.

कीजिए ब्यूटीफुल सॉन्ग. और मेरे पास एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग है और ये रिसेंटली रिलीज किया गया है, द वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय समर जाफरी. और मैं ये प्ले करने जा रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय शो, तो उसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक प्लस न्यूज ब्रेक की जानेब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: मुल्क ॻाल्हियुनि जो हिसो न बणबो। पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त अमेरिकी नाकाबंदी ख़तम थी त आमदा हरबूस खां गुज़रण जो अमल असांजे तय कयल इंतज़ामनि तहत थींदो। ईरानी आमदा हरबूस ते ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी अमन वाइदे ताईं पहुचण जे लाइ अहम ऐं असांजी अज़ीम क़ुर्बानीनि जे बुनियादी सुकून मां हिकु अहम जोग्राफ़ी अहमियत आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
5: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: गुलाम सरवर बगाई, गुलाम सरवर बगाई हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं सर सलाम तवां खे, तवां जी पूरी टीम खे, डेडिकेशन वूरो खान लाखो एजाज उल्ला अमानुल्ला विसरो, थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी हमें मैसेज रिसीव हुआ है विलेज वडेरो दोस्त मोहम्मद जिस्कानी से सुन रहे हैं, गुलाम अब्बास जिस्कानी, मोहम्मद दाऊद जिस्कानी, खालिद जिस्कानी, मोहम्मद जिस्कानी एंड फिरदौस, नहीं सॉरी कहते हैं कि फैन सॉरी भूल गया, रेडियो फैन सॉरी भूल गया, एडवांस ईद मुबारक, प्लीज सॉन्ग सुनाए जलाल चांडियो का, और गाने का नाम भी लिख भेजा है इन्होंने। इसके अलावा जी और कहते हैं कि अगर प्लीज सुनाना वरना दिल बेचारा सो जाएगा, और सो गया तो उठ नहीं उठेगा नहीं। अच्छा दिल भी सोता है आपका। ओके जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कॉमेंट्स की तरफ आते हैं तो बहुत सारे कॉमेंट्स आप लोगों के, तो नूर हुसैन तनियो ने हमें कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, और देखते हैं कि गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू भाई।

जी जी, इसके अलावा हम चलते हैं आगे और कॉल्स लेते हैं आप लोगों की, कॉल लेने के लिए 03000113488। चेक करेंगे जी नेक्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो, ओके जी 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग। और जी कॉल करने के बाद टेक्टस्टर बता रहे हैं, सुना रहे हैं।

0: योगी. नेक्स्ट कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. सब सुनने वालों को अल्ताफ बोलो, जागजानी की तो एडवांस में ईद मुबारक हो.
0: आपको भी एडवांस में मुबारक.
1: किस कदर एहसास है कुदरत को मेरे दर्द का, जागते रहते हैं तारे रात पर मेरे लिए. ऐ दफ्न मुझ में कई रौनक है मत पूछ, अरे उजड़ उजड़ के जो बसता रहा वो शहर में. हंस बयाल आपके लिए कि जिस शख्स ने न तुझे चाहा मांगा भी नहीं, अरे उस शख्स को तो मिल भी जाए तो इंसाफ
0: इंसाफ है.
1: अल्लाह करेगा पटन पाक के सत्य में. और गजल से पहले एक चुप्स दे रहा हूँ कि शुरू आखिर में सुना के बाद आज 470 दफा यह बात जरूर पढ़े. आपके इल्म में, आपकी सेहत में, आपकी जिंदगी में और हर चीज में आपसे बरकत होगी. और जाते जाते वो समझा कि वो छोटी छोटी सभी ख्वाहिशों को मारे तो वो छोटी छोटी सभी ख्वाहिशों को मारे तो मेरी तरह से कोई जिंदगी गुजारे तो. मैं गया वक्त हूँ लेकिन मैं लौट आऊंगा खुलूस दिल से वो एक बार पुकारे तो. मैं उसका आईना बन जाऊंगा, वो मेरा चेहरा है. ऐसा ही है ना?
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है.
1: मैं आईना हूँ दिखाऊंगा घर चेहरों के, अरे जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए. मैं उसका आईना बन जाऊं वो मेरा चेहरा, वो मेरे सामने खुद को कभी सवारे तो.
0: अरे वाह.
1: निकल कर घर से साहिल पर आ तो जाऊं मगर लगा सके ना अगर पार ये किनारे तो. वो मेरे दुख की अजियत समझ नहीं सकता, वो मेरे दुख की अजियत समझ नहीं सकता. इसी को जीत कर अपनी खुशी से हारे तो.
0: अरे वाह.
1: खुद अपने कदमों पे, किसी को जीत कर अपनी खुशी से हारे तो. खुद अपने कदमों पे चलना पड़ेगा किसको नदीम, तुझे गिराएंगे नजरों से ये सहारे तो. तुझे गिराएंगे नजरों से ये सहारे तो. तू किसी की हर्फ दुआ में है, तू किसी के हर्फ तलब में हो. तुझे चाहता कोई और है, तुझे मांगता कोई और है. सबके आले मोहम्मद से जो बेटा मांगो, सबके आले मोहम्मद तो सबको मिल जाए. अस्सलाम वालेकुम. या अली मदद, अल्लाह बलो जाग जानी को सबको सलाम है मोहब्बत.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच जाग जानी अंकल. और इसी के साथ हम चलते हैं आगे. और आज हज का बाबरकत दिन है और हज एक ऐसी इबादत है जो हमें इज्तमाईयत इत्तेहादियत का दर्श देती है. और जितने भी लोग हैं इस वक्त जो हज को अदा करेंगे, चाहे वो किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, चाहे वो रंगो नस्ल का इम्तियाज हो, चाहे जात पात का इख्तलाफ हो, आज वो एक होकर तवाफ करेंगे. और हज एक ऐसी इबादत है जो कि इन सबको खत्म कर देती है. इस इबादत की जहां बेशुमार फजीलतें हैं, वहीं इसमें बेशुमार हिकमतें भी पोशीदा हैं. हज के लगवी मायने अलकसद के हैं. अलकसद यानी इरादा करना. इसके अलावा तवाफ और वकूफ अपने वक्त में बहालत एहराम से पहले हज की नियत से अदा करने से हज की

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और इसके अलावा आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स और मैसेजेस के थ्रू. तो कॉल्स और मैसेजेस करने के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. मैसेजेस करें 8881 पे, कॉल्स करें 03000113488 के ऊपर. आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को रिसीव किया जा रहा है. सो आज का जो टंग ट्विस्टर है दैट इज कोमल. कोमल ने कागज की कश्ती किनारे के खड्डे में खिसका दी. ठीक है जी, तो ये कहना है कोमल ने कागज की कश्ती किनारे के खड्डे में खिसका दी. कॉलर लेने जा रही नेक्स्ट. हेलो
1: हेलो. अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम सागर भाई, सुरों में कहेंगे ये टंग ट्विस्टर.
1: जी जी, टंग ट्विस्टर क्या है मैम?
0: टंग ट्विस्टर ये है कि कोमल ने कागज की कश्ती किनारे के खड्डे में खिसका दी.
1: कोमल ने कागज की
0: कश्ती
1: कश्ती
0: किनारे के खड्डे में खिसका दी.
1: किनारे के खड्डे में खिसका दी.
0: यस आ जाएगा,
1: आ जाएगा इंशाल्लाह. कोशिश करूंगा तो आ जाएगा.
0: ओके तो फिर बोले जल्दी से.
1: कोमल ने कागज की कश्ती कोमल ने कागज की कश्ती किनारे से
0: किनारे के खड्डे में खिसका दी. किनारे के खड्डे में खिसका.
1: अच्छा अच्छा. किनारे से खड्डे में खिसका दी तो मन में कागज की

0: अरे वाह क्या बात है जी, क्या बात है, आ गए और छा गए सागर भाई। ओके जी जबरदस्त, और कुछ कहेंगे?
1: तीन हफ्ते की लेट मैंने निकालनी थी।
0: चलिए जी जबरदस्त। और

0: DH Network, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
1: छा मां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: से बात।
1: ओके जी, इसी के साथ हम लास्ट लकी कॉलर लेके प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि मैं लास्ट लकी कॉलर ले पाऊंगी, सो दैट आज का प्रोग्राम यहीं तक, और इसी के साथ हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। और जब हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे चुटचाट होगी हमारी शाम को, और शाम को हम आपसे चुटचाट करेंगे 4 से लेकर 5 बजे तक, 1 घंटा नॉन स्टॉप आपका और मेरा साथ रहेगा। सो इस प्रोग्राम में कल तो ईद है ना, तो कल का मेरे ख्याल से मेरा जो स्केड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि 7 बजे के बाद मेरा जो है प्रोग्राम होगा, आई गेस के 7 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है जी, सो ईद के पहले दिन और दूसरे दिन ये स्केड्यूल है। देन उसके बाद जो है रूटीन शोज को हम कंटिन्यू करेंगे। सो ईद के शोज आपने मिस नहीं करने और सुनते रहना है, और हमें हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में भी ज्वाइन करना है, हमारा साथ देना है। तो इंशाल्लाह कल ईद का स्केड्यूल आपको बता चुकी हूँ जी, कल 7 से लेकर 9 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। सो न मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। लेट्स सिंपल बट थिंक हाई। सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज GAFM नेटवर्क पर
1: मुखालफत में मजा ही वही आबादी बनल GDP में दहशत का तंजीमन खिलाफ गडल वाकिफ बजाय वो चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की वाखाण कई पाकिस्तान में चीनी शहर ने मनसूबन की सिक्योरिटी सख्त करने जो अज़म पाकिस्तान पारा ताइवान मामले से चीन के मौकफ की हिमायत है।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
2: जी हां 2131525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो
3: 5257 8 6।
4: जी हाँ बुढ़ी 331।

सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

ईरान जारे अमेरिका के सख्त चमाट वहाए कढ़ी अलाक पर हथियार ईरानी कौम की कुवत ए ताकत अदा कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जो हज के मौके से पैगाम। मुश्तबा खामनेई खिते भी कौमू ए मुल्क हाँ अमेरिकी अडन के लिए ढाल न बजंदा। अमेरिका के हाँ खिते में भाईवार फौजी अडन के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह न मिली। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया नई इस्लामी तहजीब जो है। इसराइल पैं उम्र के आखिरी मरहल के वेझो पहुंची चुको है। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो मीना में पाकिस्तानी हज पांडियन की कैंप्स दौरों हज पांडियन से मुलाकात भी कई। वफाकी घरू वजीर 100 वर के बार के बुजुर्ग का संदस खैरियत पुछी रिहायश ए खाधे पीते की सहूलत बाबत भी पुछो।

पाकिस्तान ऐं चीन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार वधीक मज़बूत करण ते इतफ़ाक़। चीन ऐं पाकिस्तान पारां गॾियल पधराई जारी। पधराई मूजिब सीपैक पॉइंट 2.0 जी तरक़ी ऐं ग्वादर पोर्ट खे इलाइक़े जे राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ विचे मयार जी मुख़ालफ़त बि वरजाई वई। पाबंदी वञनि TTP ऐं ॿियनि दहशतगर्द तंज़ीमुनि ख़िलाफ़ गॾियल मौक़िफ़ वरजायो वियो। चीन, ईरान, अमेरिका जंगबंदी जे लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि जी वाखाण कई। पाकिस्तान में चीनी शहरनि ऐं मनसूबनि जी सिक्योरिटी सख़्त करण जो अज़म। पाकिस्तान पारां ताइवान मामले ते चीन जे मौक़िफ़ जी हिमायत।

0: रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
0: जी हा 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: दरिया।
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
1: रब खां सवाइ कंहिं बि ग़ैर जी इबादत न कजो। मुसलमान खे हर मुसीबत में सब्र जो दगु न छॾणु घुर्जे। अलाह ताला ऐं बंदे विच में लाॻापो छुटकारे जो ज़रियो आहे। इमाम मस्जिद नबी अली अब्दुरहमान अज़ीफ़ा जो मस्जिद निमारा में हज जो ख़ुतबो, हज जे ख़ुतबे में चयो त ईमान वारो अलाह खां डिॼो ऐं तकवा इख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी कयो। तकवा इख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अलाह ताला सां शरीक न कयो। आख़िर जी तयारीअ जो सभ खां अहम अमल तौहीद अलाह ताला जी इबादत आहे। तौहीद ते अमल करण ईमान जो हिसो आहे। हज़रत मोहम्मद सलाहु वसलम अलाह जो आख़िरी नबी आहे। तकवा इख़्तियार कंदड़नि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई वई आहे। सब्र कंदड़नि जे लाइ अलाह ताला अज़ीम अजर जो वाइदो कयो आहे। अलाह जो फरमान आहे त हमेशा कूर खां बचो। अलाह ताला मुस्लमाननि जी हालत रहम फरमाए। हज जे ख़ुतबे में ख़ुशूसी दुआ। मीना खां अरफात पहुतल लखे हज मदीअनि हज जो मुखर खुद वुकूफ़ अरफा अदा करे वरितो। हाजी सगोरनि हज जो ख़ुतबो ॿुधण खां पोइ टेपरीअ टेपरी जी निमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा सिजल लथे सुम्हण जी निमाज़ बि गॾु अदा करण खां पोइ मुल्क खां रवाना थींदा, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारे रब खे राज़ी करण

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 बजे खां शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ, 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी सबब शहरन
3: क्या समझे?

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM
2: 90.4 करे जाहिर नहीं दो कर लिखण में थे न कोताही लिखण में थे न

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अखर मातली और आवाज GAFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: شيء وليا.
1: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के वीह लख का हज पांडियड़न हज जो मुख रुकन वकूफ अरफा अदा कर वरतो। मस्जिद नबरा मां मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुसैफी हज को खुतबो डीदे तो मुसलमान के मुसीबत में सबर जो दग न छड़न घुर्जे। सफर करण अल्लाह वे अजरे अजीम जो वायदो किया है। जिन कौम जुल्म नाशुक्री कई उन नेमतू खसू हुई। ईमान वारो अल्लाह का डिजो ए तकवा अख्तियार कर वायदे की पासदारी कर। तकवा अख्तियार करण ईमान वारन जो शान है। कें भी अल्लाह ताला से शरीक न कयो। रब का सिवा कें भी गैर की इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमान की हालत रहम फरमाए।

0: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: लखे हाजी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो बुधण खां पोइ विपहरी ऐं टिपहरी जी नमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा सिज लते वसल पार रवाना थींदा, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पतरियूं हणण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा, बाद में सुनत इब्राहिम तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: الحق. قال الله تعالى:
1: وأنه يحيي الموتى.
0: ذلك بأن الله على كل شيء قدير.
1: وأنه يحيي الموتى.
0: آتي
1: وأنه
0: على كل شيء قدير.
2: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के वी लख का हज पांजेड़न हज जो मुफ्त रूपन वकूफ अरफा अदा कर वरतो। मस्जिद निमरा मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल कुजैफी हज जो खुतबो डींदे मुसलमान के मुसीबत में सबर जो दग न छड़न घुर्जे। सबर करण वारन लाए अला वडे अजरे अजीम जो वायदो कियो आहे। जिन कौमन जुल्म कयो ऐं नाशुक्री कई उन्हनि खां नेमतूं खसियूं वयूं। ए ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वायदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए। लखें हाजी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ विपहरी ऐं टिपहरीअ जी निमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा मज़दलिफ़ा पहुचण शुरू थी विया, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पथरियूं हणण खां पोइ आराम खोले छॾींदा। बाद में सनत इब्राहिम विदया जानवर जी क़ुर्बानी कंदा। पाबंदी बढ़ियल टीटीपी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कंहिं बि दहशतगर्द ग्रोह खे कंहिं बि सरज़मीन तां इलाक़ाई सलामती खे नुक़सान पहुचाइण जी इजाज़त न ॾिनी। पाकिस्तान ऐं चीन जो इतफ़ाक़ ॿिन्ही मुल्कनि जो अफ़गानिस्तान में मामले ते वेझा लाॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर आज़म जे चीनी दौरे बाबति जारी थियल पधराई में सीपैक जी तरक़ी ऐं गवादर कोट इलाक़ाई राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ किथे मयार जी मुख़ालफ़त चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वखाण कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ 10 ॾींहनि जो चीन जो सरकारी दौरो मुकमल करे वापसि ॾेई पहुची वियो। विच ओभर में चिकटाइण वारी सूरतहाल आलमी सतह ते मुआशी बुहरान पैदा कयो आहे। पाकिस्तान चिकटाइण कटाइण लाइ नेकनीयती सां कोशिशूं कयूं। नायब वज़ीर आज़म इशाक डार जो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे इजलास ते ख़िताब। इशाक डार चयो त चिकटाइण कटाइण लाइ पाकिस्तान ॻाल्हियुनि लाइ ज़ोर भरियो। पाकिस्तान जे अमन ॻाल्हियुनि लाइ कोशिशनि जी वखाट ते दोस्त मुल्कनि जा फुराइता आहियूं। 80 सालनि खां कश्मीर जो मसलो हल न पियो थिए। आलमी कानून ऐं मुआहिदनि जी पासदारी यकीनी बणाइण घुर्जे। पाकिस्तान सिंतास फ़ाइदे जी तरफ़ी मुअतली तस्लीम न पियो करे। पाणीअ जो हथियार तो इस्तेमाल कंहिं बि सूरत में क़बूलनि जो न आहे। अमरीका जा जंगबंदी बावजूद ॾखण ईरान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हमला। अमरीकी फ़ौज पारां ईरान जे ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि ऐं बारूदी सुरंगूं विछाइण वारियुनि ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी दौरान सबर जो मुज़ाहिरो कंदे पंहिंजो दिफ़ा कंदी। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जे टूर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो कंहिं तरीक़े सां हुरमुज़ न खुलणो आहे। हाणे बि ईरान सां मुआहिदो मुमकिन आहे। अमरीकी सदर बि चाहे थो त मुआहिदो थिए। ईरानी पासदारनि जो इंकलाब गार्ड्स पारां अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराइण जी दावा। ईरानी मीडिया मौजूद ईरानी पासदारनि गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज ते फायरिंग बि कई। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान अबुल फज़ल शकारची चयो आहे त जंगबंदी जी भजगड़ी ते रद्द अमल अॻु खां वधीक शदीद ऐं ताक़तवर हूंदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका हुरमुज़गान जे इलाइक़े में जंगबंदी जी भजगड़ी कई। ईरान पंहिंजे दिफ़ा लाइ कंहिं बि क़दम खां पुठिते न हटंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग ते मुशावरत लाइ सुभाणे सुबुह जो कैंप डेविड में कैबिनेट इजलास सॾाए वरितो। गैर मामूली इजलास में डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग ते मुशावरत लाइ सुभाणे सुबुह जो कैंप डेविड में कैबिनेट इजलास सॾाए वरितो। गैर मामूली इजलास में कैबिनेट जे समूरनि मेंबरनि खे शिरकत जी हिदायत।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: हुआ है खात्मा ईमान पर तेरा नूरी, जबी है खुल्द के हूर कसूर आंखों में। ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत मजहर गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क इरफान से भरपूर और अजमत मोहब्बत खुदा में सरशार कलाम समात फरमाए।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।